0: अपने जी, क्या तू साला लग पाए हो यार?
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालात में।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उठूं भी मुड़ के हूँ, जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
5: हुन वेखना ना भुल्लियो, 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
2: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
3: ये हिंदवी स्वराज जवाब है।
4: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: रेडियो हां जी 1674 AM।

0: इंडिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।
5: आए

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा The smart choice. सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
3: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: हेलो, मैं हूं सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

0: हावे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए, और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए में एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ ताज।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उत्थो भी मुड़ के जत्थो कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
5: हुन वेखना ना भुल्यो, 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
5: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
7: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना एतवार भी स्कूल लगण मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचण दा।
8: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
9: इस 8 मई नूं सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
10: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच वी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: नंबर दे बांसल इमिग्रेशन वाले दा।
1: हाँ जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाने लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
3: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: लादे फेरे।
5: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
6: हां जी रेडियो।
7: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
8: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
9: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
10: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ ताज।
11: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
12: मैं उठो भी मुड़ के जथों कोई नहीं मुड़ के होगा।
9: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
11: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
13: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
14: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
13: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
14: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
13: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
14: आहो जी आहो,
13: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
15: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
13: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
14: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
13: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
14: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
13: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
14: आहो जी आहो,
13: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
16: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
17: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
18: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
19: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
20: Jawaka di acting hai kamal, pavega hun tamal.
21: School sa yaar hona hi nahi chahiye.
22: Main to kehna hai etwar bhi school lagan. Masla da mauka milda reelan to bachchan da.
23: Are bolo pappu de papa.
24: Is 8 mai nu cinema vich release hon ja rahi hai Neeru Bajwa ate Nirmal Rishi ji di movie Jawak. Vekhan zarur aayo.

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।
7: You are listening.
8: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
7: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
8: Radio Haji.
7: Stay tuned.
5: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
9: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
10: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਕ ਪਾਏ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋਸਤ ਛੁਡਾਨੇ ਚਲੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
3: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना
5: डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर
6: बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया
7: 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस
8: मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी
9: स्पेशल ऑफर विच पाओ
10: 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच
11: 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310
12: डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक
13: होने डायल करो 0406-966-668
14: और विजिट shipglobal.au

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310 डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
6: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
7: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
8: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
10: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
11: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा
12: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
1: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
13: JBCO

0: मुझे तो कोई नहीं मत कहूंगा।
1: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: उन वेखना ना भूलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा
3: रेडियो। हाँ जी, 1674 में समा हो चुका लाफ्टर थैरेपी का। कल दे गुस्से गले परेशानियां जो भी मन दे उते बोझ आ सारा कुछ आ वो एक पासे रखिए ते हसीए हसाइए अज दे सफर नूं आपां होर वधिया कैंट बनाईए। ते इस सफर दे दरम्यान साडे नाल हुंदे ने बच्चे ते मेरे नाल स्टूडियो दे विच हुंदे ने जशप्रीत कौर।
4: हाँ जी, सत श्री अकाल। एक बार मेरे वालों भी यानी यशप्रीत वालों भी उम्मीद करते हैं थोड़े दिन की शुरुआत वधिया हो गई होनी। सारे दी टोपी मफलर सारा कुछ निकल गया होना क्योंकि अज बड़ी ठंड है मेलबर्न दे विच। बट ठंड नूं रखदे आ पासे, आओ हसदे हसा हस हसा के अपने दिन की सोहनी शुरुआत करदे आ बच्चों के नाल। ते आओ करदे आ बच्चों नाल गल्लां बातां ते सुणदे आ चुटकुले बुझारत होर भी बहुत कुछ।
3: बिल्कुल जी, आओ फिर हस के ते आपां ठंड दूर करदे जदों आपां ठंड लगती है तो गल्लां करन च भी भला प्रॉब्लम आती है जैसे।
4: हाँ, कई बार तो लगता ना अवे मतलब पता नहीं बॉडी लैंग्वेज इदा दी जांदी, मैनूं मेरी आवाज भी बदल जाती है।
3: मतलब इदा लगता वा भी ठंड बड़ी दफा करो की गल करनी है।
4: बोलन च भी है ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता। हाँ
3: हुंदा
4: पता नहीं। हाँ
3: इदा मतलब भी गर्मी
4: लेजी हो जांदा बंदा ना।
3: है इदा मतलब भी गर्मी च वध बोलदा बंदा।
4: अब पता नहीं है इतने क्या नहीं।
3: हाँ भी गल सोचने वाली है भला इदा हुंदा वा
4: जी नहीं करदा
3: ठंड च साडा। मैनूं लगदा ठंड च ज्यादा बोलन नूं जी करदा बंदे दा।
4: खाण नूं ज्यादा जी करदा मैनूं तां
3: क्योंकि ठंड च आपां मिठा खाने आ एनर्जी खाने आ ते ज्यादा बोलदे आ।
4: हां जी
3: है ना, ठंड च ते सिर्फ बोलने हुंदा केड़ा कुछ करना हुंदा। चलो आपां वधांगे इस विशे दे उत्ते। आपां बहुता टाइम ना बिताते हुए तुसीं अपने सलाह मशवरे भेजने तो भेज सकते हो अपना एक्सपीरियंस, पर आपां वधदे आ अगे। सब तो पहला साडे नाल होणगे मन्नत ते फतेह। सत श्री अकाल मन्नत फतेह, की हाल ने तुहाडे?
5: कल केक घरे बेक किया मम्मा ने केक। अच्छा। क्योंकि जेडे बाहरों लियाने बहुत महंगे होंगे ना, पता नहीं की कुछ पाया होंदा ते असी मम्मा नु गिफ्ट भी दित्ते सीगे मदर्स डे दे लई।
3: आहो कुड़े बड़े महंगे केक आउंदे ते गिफ्ट भी बड़े महंगे आउंदे
4: होर।
5: गिफ्ट तो असी सस्ते ही लेके देते सीगे पर मम्मा लोड़ सीगी।
3: ਕਿਹੜੇ
4: ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਚੋਕਲੇਟ।
5: ਹਾਂਜੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ।
3: ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਨ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ?
5: ठंडी मिठी जिस दी छां ओ है मेरी प्यारी माँ, गोदी चुक के लाड़ लड़ावे, चूरी कुट मेरे मुंह विच पावे, मेरे दिल विच जिस दी
3: थां
5: ओ है मेरी प्यारी माँ।
3: साडे लई केक बनावे
4: दिखावे सी ओ
3: ते केक बना के सानू खवावे।
5: हां जी
3: ओ है साडी प्यारी मां।
5: हां जी
3: हां जी, आज ते बड़ी बीबी बनी है मन्नत।
5: नाले नाले मैं आज आप लुबी आए है ते सरप्राइज मम्मा दे ते मम्मा ने मेनू पूछे सीगा के तेनू पता वा के तू की सुनाणा वा ते मैं क्या। हां जी
3: वाह, हुन बड़ी होगी ना मन्नत।
4: सियानी होगी।
3: इनी वड्डी ते हो गई ते इनी सियानी हो गई। थैंक यू मनन।
5: थैंक यू फतना भी गल कर लो।
3: हाँ जी
4: हाँ जी।
6: सत श्री अकाल अंकल जी नाले यश दीदी जी।
3: सत श्री अकाल।
4: की हाल चाल है?

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: लादे फेर।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी रेडियो।
6: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
7: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है, हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: रेडियो हांजी 1674 AM

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाड़ी सेवा विच।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: रुसिया होया है वे तू की सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना।

0: ओए सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: हांजी, ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
5: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
6: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
7: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
8: Pandey ji, kya tu sala luck paaye ho yaar? Ek dost ke saath pakde gaye aur dusri dost chhudane chale aaye. Aur ye teesri dost hi hai na?
9: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
10: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
11: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
12: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
13: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक। वेखण जरूर आयो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आंखें पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मेरा ब्याह सुने
1: यार तू इतनी नी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
5: Acha sunna. Ek gal das. Sachi sachi das.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी
1: Toyota.

0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की हो त्रवाल,
0: कब हूँ होए बह बड़ राजा, कब हूँ पे खारी नीच का साजा,
1: कब हूँ अपकीर्त में आवे, कब हूँ भला भला कहावे,
0: ज्यों प्रभु राखे तिबिहि रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कब होए पंडित करे बख्यान, कब हूँ मोहन धारी लावे ध्यान,
0: कब हूँ तर तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कब हूँ कीट हस पतंग होए जिया, अनक जोन भर में भरमिया,
0: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रा पावे तिवै नचावे,
1: जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई,
0: कब हूँ साध संगत ए हो पावे, उस स्थान ते बहर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश,
0: मंतन नामर ते करंग, सदा विसै पार ब्रह्म कै संग,
1: ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समान,
0: मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान,
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-11 श्लोक,
0: सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले, सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी,
1: जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरपति हो स्वान,
0: जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत,
1: आपस को कर्मंत कहावे, जन्म मरे बो जोन भरमावे,
0: धन भूमगा जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान,
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे,
0: धनवंता होए कर गुर बावे, तरन समान कछ संग न जावे,
1: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु, पल पीतरता का होए विनाश,
0: सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत,
1: किसे ना बदे आप अहंकारी, तर्म राय तिस करे खुआरी,
0: गुर प्रसाद जाका मिटे बिमान, सो जान नानक दर गए परवान,
1: कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे,
0: अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार,
1: अनक यत्न करा तुम निद्रवे, हर दर गए को कैसे गवे,
0: आप सुखो जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे,
1: सर्व किरिंजा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए,
1: जावे जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिर,
0: जब तारे को बैरी मी, तब लग निचल नाही चीत,
1: जब लग मोह मगन सुमाए, तब लग धर्म रह देश जाए,
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे,
1: सैस कटेला कोट तावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे,
0: अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप मरे,
1: बिना संतोख नहीं को राजा, स्वप्न मनोत बिते सब काज,
0: नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए,
1: करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाव,
0: करन करावन करने हार, इसका हाथ कहां बिचार,
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप तब सोए,
0: जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हो कै संग,
1: पूजै देखै करै बिबेक, आपे एक आपे अनेक,
0: मरै न बिनसै आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए,
1: आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ,
0: आप कीनो आपन विस्तार, सब कछु उसका ओहो करने हार,
1: उस ते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक सोए,
0: अपने चले तब करने हार, कौत करै रंग अपार,
1: मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए,
0: सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बिख्यानी,
1: सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने विरले चीना,
0: भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर पार अनूप,
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी स्वर्ण बखानी,
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत,
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-12 श्लोक,
0: संत शरण जो जन परै, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार, सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी,
1: संत के दुखन आरजा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सुबा ते ही,
0: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक बीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन कागजों लवे,
1: संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिक्त जोन कर्माए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले,
1: संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए,
0: संत दुखी का था उको नाहे, नानक संत पावे ता ओए भीगत पाहे,
1: संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई,
0: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन,
0: संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग,
1: संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का निमित,
1: संत के दुखी को डान लागे, संत को दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी,
1: संत का दुखी जन्मै मरे, संत के दुख ना सुख ते टरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए,
1: संत का दुखी अज बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीजा पे ही खाहे,
1: संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत भावे ता ले उबार,
0: संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तर ਫੜਾਏ।
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ

0: ਕੀ ਭੁਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਕ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟਾ ਕੇ ਲਾ ਜੋ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਦਹੀਲਾ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ
1: ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵ ਆਈਐ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ
0: ਪਇਆ ਕਿਰਤਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
1: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾ
1: ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ
0: ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ
1: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 8-13 ਸਲੋਕ
1: ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਮਨ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਧੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
0: ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਨ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਹਾ
1: ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਢ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
0: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਮੈਨੋ ਪਿਵ ਠਾਕੁਰ ਕਾਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
0: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੇ ਭਾਵ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ
0: ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ
0: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਇਹ ਤੁਤ ਕੀ ਹੋ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ
0: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਝੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਤੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਨਹਿਤ
1: ਆਂਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ
0: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਦੁਖ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪਰ ਮੰਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਤੈਸਾ ਦਿਸਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਾ ਬੂਝਿਆ
0: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
0: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਦਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪੋ ਥਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਈ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਅਲਖ ਅਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
0: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੇ ਤਨਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
0: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸੋਜੋ ਪੈ ਨਿਹਾਲ
1: ਹੁਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਵਡਭਾਗੈ
0: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਬ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
0: ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀ ਆਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
0: ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਹਿ ਸੁਮਾਏ ਓਏ ਨਿਧਾਨ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਾਏ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ 8-14 ਸਲੋਕ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਟੁਟੀ ਗਾਨਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ
0: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
0: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਵੈ
1: ਅਤਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ
0: ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾ ਮੈਂ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤਾ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਾ ਰਹਿ
0: ਜਿਉ ਅੰਤ ਕਾ ਦੀਪ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾਵਧਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
0: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਤੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
0: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਿਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ
0: ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਰਸ ਡੋਬੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾ ਫਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ
1: ਤਜਬ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤੂਲ
0: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੈ ਸੋਏ
0: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
0: ਅਨਕ ਵਿਗਨ ਤੇ साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस जाखै
1: कोट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया
0: मृत्यु को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार
1: सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
0: सब तिस का करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
1: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
0: हर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भगत भगत सुनिए तिह लोए जाके हृदय एक होए
1: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस साचा आकार सच वर्ती साचा पासार
1: पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: अवनाशी परम मन में राख मान की तू प्रीत त्याग
1: तिसते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: सातरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
1: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवैसे
1: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग
0: नाना बितकीनो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
0: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ
0: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार
1: नाम के धारे पुरिया सा पवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकि गत होए
0: आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सृष्टि सो कर नहार अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझे तिस आया स्वाद
0: प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे
1: कोए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरे संसार
0: जन का सेवक सुवड़ भागी जन कै संग एक ले गुलागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सोलह श्लोक
1: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पे खनहार नाम सत सत आवनहार
0: आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्राप्त वक्ता सुरत सत सत जा सुनता
0: भोजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करन करावन तिन मूल पछानिया
0: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: पैते निर्भव होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
0: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई
1: बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास सुमारे
1: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै
0: प्रभ कै सेवक को न पहुंचै प्रभ कै सेवक ऊचते ऊचै
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
0: नीकी कीरी मैं कर राखै पसम करे लश्कर कोट लाखै
1: जिसका सास न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ
0: मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव बिरथे जात
1: मारे न राखै अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
0: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडानी
1: बारम बार बार प्रभ जपिया पी अमृत एहो मंत तंत्र पिया
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाहीं दिसताया
1: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
0: नाम रस जो जंत बताने मन तन नामे नाम समान
1: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
0: लो जाचे वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात
1: कलह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यों रह है समाये
0: जो हो आहो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने
1: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो
0: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से ही जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
1: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसकै दरसा पाप मिटावे
0: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
1: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूज हो सद पैरा
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सतारा श्लोक
1: सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपति
0: सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै
0: सतगुर सिख कै बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै
1: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे
0: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है
1: गुर कै ग्रह सेवक जो रह है गुर की आज्ञा मन में सह है
0: आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै
1: मन बिच है सतगुर कै पास ते सेवक के कार्ज रास
0: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: बीस विश्वे गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
0: सर्वन दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता
1: ब्रह्म है जन जन मैं पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कछ परम
0: सहस सियान पलया न जाइय नानक ऐसा गुरु भागी पाइय
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
0: संग्राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवै
1: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तुम पतिया ने
0: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पेखै होए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए
0: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुरख पूरन बबे
1: काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर खुदाई ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है
0: सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए
0: पुरका नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
1: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे
0: मोह माया कै संग न लेप मन मै राखै हर हर एक
1: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
0: तप्त माहे ठंड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
1: जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
0: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
1: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
0: चित पाई चूके भउ गवन सुन नानक हर हाजा सवन
1: निर्गुण अपसर गुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही
0: अपने चित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग
1: रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठारा श्लोक
1: साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमाव ना नानक हो धन सार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपति
0: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
1: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद मैं उरतार हो
0: परम कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ
1: एहो धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस धन को चार कुंट उठतावै सो धन हर सेवा ते पाव है
0: जिस को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत
1: जे शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी
0: अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए
1: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगै परवान
0: मन प्रबोधो हर के नाए दर्द स्तावत आवै ठाए
1: ताको बिघन न लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: भाव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास
0: सित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जमफासी
1: तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा
0: आवागुन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यो रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनको पावन छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करु मन लाए मन वंचित नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटांबर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी
0: जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मातू लिहे आने भक्त बिना बहु डूबे सियाने
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत त्रिय त्रस मैल बिनस जाए हो मैं मिख फैल
1: होहे अचिंत बसै सुख नाल सांस गरा सर नाम संभाल
0: छाट सियान सगली मना सात संग पावे सजताना
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नान जाकै मस्त कलेख
1: एको जापे को सालाहे एक सिमर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आ पूर्ण पूरहे ओ प्राभ्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ उन्नीस श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल सों लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत
0: एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: करे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बडभागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै
1: गुर पूरै ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
0: पाए त्रिय संसार बिन प्रकृति तन हो सी चार
1: सर्व कल्याण सुख निद नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ
0: नेत्रो पे दरस सुख होए मन बिकसै साधु चरण तो
1: भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस्ती जे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
0: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत विछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत
1: साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: मणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सतनाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि पुन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब आपन आप अपार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेले आवर्ती जा नान करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अबनासी सुखी अपने आसन तै जन्म मरण को कहा बिनासन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत प्राप्त होता तह बिन मैल कहो क्या तूता।
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
0: जय जो स्वरूपी जो संग समावै तह किसे भू कौन तृप्तावै।
1: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार।
0: जापनी सुवा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
1: जय सर्व कला आपे परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन।
0: जब अपने आप आप उतारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे।
1: जय अपन ऊंच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा।
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गज जानो आप।
1: जय अछल अछेद अपेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया।
0: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश।
1: जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।
0: जय अपन आप आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा।
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा।
0: जय आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार।
1: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग वंशावत।
0: जाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार।
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान।
0: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक एक है।
1: जय अवगत भक्त है आप जय पसरै पासार संत प्रताप।
0: तुहु पाका आपै धनी उनकी शोभा उन्हु बनी।
1: आप है कौत करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग।
0: जिस भावै तुसि अपन नाय लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै।
1: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। अट इक्की श्लोक।
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
1: जां तिस भावै तां सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए।
0: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए।
1: जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता।
1: जी जंत्र सब ता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
0: जिस राखै तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे।
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरे एक निरंजन राय।
0: जी की जुग जा कै सुभात अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार।
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।
0: प्रत पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सह त्यार।
1: जिस भावै तिस लय मिलाए भक्त करै हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया।
1: जान लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए।
0: सेवो को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए।
1: इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर।
1: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले।
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद।
1: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार।
0: अमृत बचन हर की गुण गाओ प्रांत नन का यह सुहाओ।
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंदीरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया।
1: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवै जाहे।
0: रिश्ते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए।
1: निर्भउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तु उदरत श्रिष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम। अठ बाई श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे।
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाद अनहत है नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद।
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत।
0: करण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे।
1: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहु डूलै।
0: सर्व करा कर खेलै खेल ਮੂਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤ ਧਾਰਹਿਉ ਸਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਭੀਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਾ ਮੋਹੀ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
0: ਅਨਕਲਾ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਲਿਖਤ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
0: ਅੰਤਰਗਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਚੰਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੇ ਮਦਲ ਪੱਤੋ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
0: ਆਪ ਸਾਜ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ
0: ਜਾ ਨਾਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਈ ਸਲੋਕ
1: ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ
1: ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ
0: ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ
1: ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ
0: ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
0: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
1: ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
0: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
0: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
1: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
0: ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ
1: ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ
0: ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਤਰਿਆ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਾਥੇ
1: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
0: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਲੈਨ
1: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
0: ਹਾਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਤੇ
1: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
0: ਤਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
0: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
0: ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਦ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
0: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸਨਾਨ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
0: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
1: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
0: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਚੀਤ
0: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
1: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
0: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਬੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ ਸਲੋਕ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ, ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
2: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
2: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स का गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: अब अगर इस तरह से गुणों पर कॉन्सेंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
3: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज है, ये ऑलरेडी है, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो इजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माय टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माय मेडिटेशन, व्हेन देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट
0: आई शो मे व्हेन आई कम बैक,
3: यस
0: व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस
3: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करूं और वो गुण पर चिंतन करूं, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरूं, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हार्ट पर पड़ रहा है. इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे. Yes, it will work. Definitely, 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है. It will definitely work.
0: I think I can actually feel कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने चाहिए.
2: ये बहुत ही अच्छी बात शिवानी बेन ने क्लियर की है. कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा. क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है. और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे. फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे.
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
2: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन.
3: बेसिकली 15 मिनट में आपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना. जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले. आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स. गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं. तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे, then it will hardly take any time to do its work.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें. क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है. आई जस्ट कांट इमेजिन, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं.
2: आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा. वह है डायबिटीज. कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की. छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें. कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे. शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं. शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया.
0: बिना दवाई,
2: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था. दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर. अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई. और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई.
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की,
2: हाँ, ब्लड इंसुलिन. आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ, परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई, और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया. उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हैं, मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है, जो विजुअलाइजेशन करना है. सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है.
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है.
2: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ. तो सबसे पहला तो यह स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है. उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है. दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं. तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है. फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है. शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है. तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं.
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है, वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
2: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
2: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
2: है तो वो काम नहीं कर रहा है।
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
2: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
2: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी
2: हाथ पर सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये
0: चारों कैसे करें?
2: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: आई कुड विजुलाइज एक्चुअली
2: सेटल इट ना, उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
2: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, उसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है तो क्या होगा?
0: मन करेगा खाने का।
2: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
0: हम खा लेंगे।
2: उससे पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा।
0: अच्छा, मुंह में पानी
2: देखो वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथी है।
0: अच्छा,
2: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथी से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस कर,
0: तब ये हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना।
2: हाँ,
0: पॉसिबल।
2: और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले जैसे ही खाने की डिश आ गई आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपन्स।
0: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा। वो तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
2: हर हर और
0: उतना
2: कर
0: ही जितना चाहिए।
2: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए।
0: अच्छा।
2: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया,
0: इट इज एक्चुअली वर्किंग.
2: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
0: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
2: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
0: अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन,
2: कि अपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं. यह सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, यह सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
0: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया.
2: हाँ,
0: वो व्हाइट व्हाइट स्क्वायर.
2: हाँ, स्क्वायर से वो
0: नहीं कर पा रहे. और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता
2: है. बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वह दूसरा एक कहते हैं कि आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो. 250 लिखा है सारे बॉडी में. 250 लिखा हुआ है. ब्लड में उतने सारे स्क्वायर्स है. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियली ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया. आत्मा में वह शक्ति है कि वह प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
0: Does it require quite lot of concentration?
2: Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
3: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन. मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है. अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं. इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट. नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी. सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है. इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं.
0: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ को. अच्छा, दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती.
3: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड. हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते. हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए. अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माई माइंड विल डू इट. सी, इफ माई माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माई माइंड कैन हील द थिंग. अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना. इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर. अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट. इट विल डेफिनेटली वर्क. लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते. नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी. Then the power of the thought will not work. Power of the mind to work, फिर वो thought powerful, positive and concentrated होगा. उसमें कोई
0: conflict नहीं होगा,
3: dilution भी नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि एक thought है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा thought है office में तो आज ये काम किया नहीं. Then तो क्या एक thought से मैं positive emotion create कर रही हूँ, दूसरे thought से मैं stress create कर रही हूँ, तो I'll be opening and closing the door actually, so it won't work properly. It has to be very focused, channelized thoughts. इसलिए meditation का जो अभ्यास regular रीति से करेंगे, पर उनके लिए ये करना, it's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
0: Actually,
2: और एक aspect आपको बताता हूँ जो diabetes में है कि भी अधिकतर जो type 2 diabetes है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, type 2 diabetes में insulin तो होता है, अधिक भी होता है. जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंक लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
0: अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी
2: काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंक लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंक खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंक लगा है, वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है, टेंशन ग्रीड ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है, सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया, अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
0: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
2: कम? हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
0: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें शिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
3: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
0: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
2: पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और

0: जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
1: हाँ,
0: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, वी वर क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा के ये दोनों जो फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
0: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे, आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है और करीब 25 इयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी जरूरत क्या, एक तो बताता हूं पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे, अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
1: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
0: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा, दूसरा ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से 0.5 मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
2: राइट, इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। एक्चुअली वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
1: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहें और सोचे,
2: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
1: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है। आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन, वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट। कि कौन

है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक देखण जरूर आयो।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रहने जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
4: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी, स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.in।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।